आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर जलजले के झटकों को 2 हफ्ते से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद तलाश और बचाव की टीमें सुस्त रवि से पेशरफ्त कर रही हैं। बावर किया जा रहा है कि बहुत से लोग अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। वेनेजुएला की हुकूमत ने कहा है कि 24 जून के

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 10 जुलाई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावाना से सुने समाचार। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार देश के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को बृहस्पतिवार को सुपुर्दे खाख कर दिया गया, लेकिन उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई के वहां मौजूद होने के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका और इसराइल ने फरवरी में आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी थी। उनके पार्थिव शरीर को पूर्वोत्तर ईरान के मशहद स्थित पवित्र शिया स्थल इमाम रजा के मकबरे में सुपुर्द खाक किया गया। इससे पहले मुज्तबा के 3 भाइयों को पिता के ताबूत के सामने खड़े होकर अन्य लोगों के साथ प्रार्थना करते देखा गया था। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता बहाल होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि उसकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरान पर हमले किए। तब से दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने घोषणा की है कि उनका देश अमेरिका निर्मित टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने पर सहमत हो गया है। इस समझौते का भविष्य अनिश्चित था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे जर्मनी में अपने देश की सैन्य उपस्थिति कम करेंगे। मर्ट्स ने बृहस्पतिवार को बर्लिन में कहा, हमने अंकारा में नाटो की बैठक से इतर अमरीका सरकार के साथ समझौता किया है कि हम अमरीकी टोमाहॉक मिसाइलें खरीदेंगे और उन्हें जर्मनी में तैनात करेंगे। मर्ट्स ने कहा कि उनका देश रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामरिक खाई को पाट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी यूरोपीय प्रणालियां विकसित करने पर काम करेंगे। दोनों देशों ने 2024 में सहमति जताई थी कि अमेरिका मौजूदा वर्ष से जर्मनी में अपनी सेनाओं को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियारों से लैस करेगा। इस समझौते में टोमाहॉक मिसाइलें भी शामिल थीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने वाली जापानी कंपनी के साथ समन्वय करने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात की। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस देगा। उन्होंने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन से इतर चर्चा की। लाइसेंस के तहत पेट्रियट मिसाइलें बनाने वाली मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में पूछे जाने पर जेलेंस्की ने कहा कि जापानी कंपनी ने बेहद उच्च स्तर का उत्पादन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के लिए उत्पादन शुरू करने का ये एक मजबूत आधार है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: वेनेजुएला में भीषण भूकंपों को आए 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है और तलाश व बचाव दलों का काम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अब भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा कि 24 जून को आए भूकंपों में बृहस्पतिवार तक 3,889 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र लागवायरा के कराबाजेदा नगर में इमारतें कंक्रीट का ढेर बन गई हैं। इमारत के मलबे में दबी अपनी छोटी बहन की तलाश कर रही एक महिला ने बताया कि मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी उपलब्ध नहीं है। उसने ये भी बताया कि उसकी बहन का परिवार भी मलबे में दबा हुआ है और उसने उन्हें बाहर निकालने के लिए मदद की गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन पीड़ितों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक गैर सरकारी संगठन पीस विंड्स जापान ने कराबाजेदा के पास अस्थायी क्लिनिक खोली है। बृहस्पतिवार को कई पीड़ित वहां चिकित्सा उपचार के लिए आए। इस संगठन ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर तंबुओं में रह रहे शरणार्थियों को करी चावल परोसा। मित्सुबिशी मोटर्स ने ह्यूमनॉइड रोबोट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक जापानी स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है। कंपनी की अपने कारखानों में इन रोबोटों का इस्तेमाल करने और अन्य कंपनियों को बेचने की योजना है। साझेदारों का कहना है कि उनका लक्ष्य ऐसे रोबोट विकसित करना है जो मनुष्यों के साथ काम कर सकें और उनकी गतिविधियों की नकल करना सीख सकें। हाईलैंडर्स नामक ये स्टार्टअप कंपनी टोक्यो विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी और इसकी विशेषज्ञता फिजिकल AI है। मित्सुबिशी जल्द से जल्द अगले साल के शुरू में क्योटो स्थित कारखाने में इन रोबोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना चाहती है। मित्सुबिशी मोटर्स के CEO खातो ताकाओ ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ऐसी औद्योगिक नींव रखना है जिसमें मनुष्य और रोबोट एक साथ काम करें। हाईलैंडर्स के CEO मासुओका हिरोया ने भी इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम घरेलू तकनीक का उपयोग करके देश में श्रमिकों की कमी और सामाजिक चुनौतियों को दूर करना चाहते हैं और अगली पीढ़ी को एक उज्जवल व मजबूत जापान सौंपना चाहते हैं। उत्तरी जापान के कृषि प्रधान गांव में धान के खेत में विशाल छवियों को निहारने का सबसे बढ़िया समय शुरू हो गया है। दरअसल आओमोरी प्रीफेक्चर के इनाका दाते गांव में धान के खेतों में हर साल ये कला पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां अलग अलग रंगों के धान के पत्तों और बालियों वाली कई किस्मों को विशाल आकृतियों में बोया जाता है। इस वर्ष की छवियां पारंपरिक प्रेत चित्रकारी पर आधारित हैं। बुधवार को स्थानीय आइडल ग्रुप की पूर्व सदस्य जोना गोल्ड ने घोषणा की कि धान कला को देखने का सबसे अच्छा समय शुरू हो गया है। जोना गोल्ड इस वर्ष के विषय प्रेत चित्रकारी से मेल खाते सफेद किमोनो में नजर आई। 18वीं शताब्दी के चित्रकार मारुयामा ओक्यो की प्रसिद्ध प्रेत चित्रकारी पर आधारित धान कला अब पूरी तरह से निखर कर सामने आ गई है। बगल के एक अन्य खेत में मांगा रचनाकार इशिजुका चिहिरो द्वारा ओक्यो की चित्रकारी का आधुनिक रूपांतरण भी देखा जा सकता है। एक खास अवलोकन स्थल से एक ही नजर में दोनों विशाल प्रेत चित्र देखे जा सकते हैं। ग्राम अधिकारियों के अनुसार इनाका दाते धान कला को निहारने का सबसे अच्छा समय अगस्त मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार देश के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को बृहस्पतिवार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई के वहां मौजूद होने के बारे में मीडिया में कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका और इसराइल ने फरवरी में आयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी थी। उनके पार्थिव शरीर को पूर्वोत्तर ईरान के मशहद स्थित पवित्र शिया स्थल इमाम रजा के मकबरे में सुपुर्दे खाक किया गया। इससे पहले मुज्तबा के तीन भाइयों को पिता के ताबूत के सामने खड़े होकर अन्य लोगों के साथ प्रार्थना करते देखा गया था। अंतिम संस्कार के तुरंत बाद अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता बहाल होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि उसकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरान पर हमले किए। तब से दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।